0: ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जाप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोच सोच न होवई जे सोची लख वार
1: चुप न होवई जे लाई रहा निवतार
0: क्या भुख न उतरी जे

0: होवन आकार हुक्म न कहया जाई।
1: हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई।
0: हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई
1: है। इक ना हुक्मी बख्शीश इक हुक्मी सदा पवाई है।
0: हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई।
1: नानक हुक्मै जे बुझ जाता हम मैं कह न कोई।
0: गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान।
1: गावे को गुण वडियाई आचार गावे को विद्या विखम विचार।
0: गावे को साज करे तन खे गावे को जीले फिर देहे।
1: गावे को जापै दिसे दूर गावे को वेखै हद रह दूर।
0: कथना कथी न आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट।
1: देदा देले दे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाही।
0: हुक्मी हुक्म चलाए राहु नानक बिकसै वे परवाहु।
1: साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार।
0: आकै मंगे दे दे दात करी दातार।
1: फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार।
0: मोह के बोलन बोलिए जित सुन तरे पे।

0: सुरना सुने धर तबल आकाश
1: सुने दीप लो पाताल सुने पोहे न सके गाल
0: सदा विगा सुने दुख पाप का नाश
1: सुने ईश्वर बर्मा इंद सुने मुख सलाहन मंद
0: जुग तन पी सुने शास मृत वेद
1: नानक भक्ता सदा विगास सुने दुख पाप का नाश
0: संतो ज्ञान सुने अर्थ

0: न सकै कोई।
1: दाखन पाए हो जाने जीतियां मोहि खाए।
0: आपे जाने आपे दे आखे से पे के।
1: जिसनो बख्शे सब साला नानक पातशाही पातशाह हो।

0: गावन पंडित पंडर की सरे जुग जुग वेदा नाले
1: मोनिया मन मोहन सुरगा मास पयाले
0: गावन रत्नो पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले
1: महाबल सूरा गावे खानी चारे
0: गावे खंड मंडल वर पंडा।

0: है, जम है, अपूत है, अशुद्ध है,
1: शोक है, कर्म है, परम है,
0: अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है,
1: निदान अनेक है, फ्रीक है,
0: कुछ अंग पयात छंद,
1: नमो सर्वमान्य समस्त निदान नमो देव देवी अपेखी अपेवे,
0: नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे,
1: नाथ नृसंगी प्रमाथ, नमो पान पाने, नमो मन माने,
0: नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने,
1: नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे,
0: अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे, परभंगे परमाथे समस्ती बभूते,
1: कुम्भना निकला की स्वरूपे, नमो राज राजेश परम रूपे,
0: नमो जोग जगेश्वर परम सिद्धे, नमो राज रजेश्वर परम वृद्धे,
1: नमो शास्त्र पाणि, नमो अस्त्र मणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता,
0: अपेक्षिया परमिया भोगिया भुगते, नमो जोग जगेश्वर परम जुगते,
1: नमो नत नारायण गुरु कर्म, नमो प्रेता प्रेत देवी सुतर्मे,
0: नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह शाहंग, नमो पूप पूपे,
1: नमो दान दानी, नमो मन मानि, नमो रोग रोगि, नमस्तंग शनाने,
0: नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग,
1: सदा सिद्धानां श्रम परनाशी नूपी रूपे समस्तल निवासी,
0: सदा सिद्धा

0: चक्र करता जता चक्र हरता जता चक्र दाने जता चक्र जाने
1: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पास जता चक्र वास जता चक्र माने जता चक्र दाने
1: चाचरी शंद
0: न मित्र न परम न पितर
1: न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये
0: न मित्र परि पवित्र
1: अदिशे अदिशे अदिशे अकृशे भगवती शंत वै प्रसाद कहते
0: क्या शि दिशा क्या पिच पिसा क्या गंज कर्म क्या पंच परम
1: क्या पिच लोके क्या दित सोके क्या अवधूत वरने के वूत करने
0: राजम प्रभाय धर्मंग तु जाय क्या सुख वर्ण सर्व भरने
1: के जगतं कृति है के शत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के
0: कारण कुनंद गुरु जी
1: राज करीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है
0: सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है
0: दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है
0: सर्वत्र अंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पीखी के सर्वत्र पीखी
1: के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है
0: सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: के सर्वत्र मान्य है सदैव अंग प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र
0: तापी है सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
1: के सर्वं कलि में के फर्मंग फही में के आकल अला में के साहिब कला में
0: जो तुम अमल रुजु है मैं सुसला मैं सलिख तुम दाम है
1: गली मल शिकस्त है गरीब अल परस्त है विलंदर मकाने जमीन अल जमाने
0: तुम अमल रुजु निदान हरि फुल जी मर जाए किस कीन है।

0: मुक्त भूत प्रभुक्त प्रभाषुक सुधा है
1: सदैव स्वरूप है अपेक्षि अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है
0: सुसलाम सदैव कामन वास रूप गाद अनूप है
1: अनाद स्वरूप नंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
0: दरवाद्य गंजी अगाधि सुभंग सर्भाग्य सर्वानुरागी
1: त्रिपुक्त स्वरूप है छिज है छूत है के नरकंग पर नास है पृथ्वी और प्रवास है
0: प्रभा सदा वंग सदा भोग स्वरूप प्रजोक्त अनूप है
1: निरोक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है।

0: सर्वंगता सर्वं ज्ञाता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं कर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणंग सर्वं त्राणंग
0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता
1: सावल शांतवा प्रसाद
0: नास्ति सदा प्रकाशय नंगं स्वरूपे पंगं बभूते
1: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाद बभूते
0: ना मित्र भंगी तर काम निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे
1: ना पोत्र ना पुत्र ना सत्र ना मित्र ना ताते ना माते ना जाते ना पाते
0: श्री कमितो मी कसदैव प्रभा है जय है अजा है
1: भगवती शांत व प्रसाद
0: यार जूर के हाजर जूर में सुसलाम है समस्त कलाम है
1: के साहिब दिमाग है के हुसन चिराग है के कामल करीम है के राज करीम है
0: के रोजी दहन है के राज करीम है करीमल कमाल है के सुन जमाल है
1: करीमल के राज है गरीबल निवास है हरीफल शिकान है रासल फिकान है
0: प्रणाश समस्त निवास अंजन गनीम रजाय करीम है
1: समस्त जुबान है कि साहेब किरा है कि नरकन पर नास है बेस्तुल निवास है
0: सर्वल गवान में सर्वान तमाम तमीज समस्त अजीज है
1: वर्ग परमीश है समस्त अदीश है देशोल लेख है हमेशोल पेख है
0: जमामी खोली मैं करी मुल्क माल है जरूरत जमाल है
1: के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो बभूत है
0: के आत्म प्रभ है के चलंग नंग के मितो अपंग है
1: मन पार शांत व प्रसाद
0: मन पर नांगुन गान मदा मार पर गांज हर नर पर पांज
1: अन गन पर नाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड
0: नाश मन मन प्रकाश गुण गान पर नाम जल थल मदाम
1: अनशी जे अंग आसन अपंग उपमा पार गत मितो दार
0: मन दस बस पन जल थल मन दस बस बेअंत
1: अन पावन नास त्रितत्व रास आजान बाहो एक सदा हो
0: ओंकार आद कथनीय नाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल
1: कर कर प्रणाम।

0: सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्वपास्य है, सर्वनाश्य है,
1: त्रयम् संग पर है, सर्वेश्वर है, जगतीश्वर है,
0: ब्रह्मंड से है, कलखंड से है, परते पर है, करुणाकर है।

0: पनायक है सरपायक है
1: पापंजन है गंजन है रे पतापन है जप जापन है
0: कृता सर्वकृत है कर्ता कर है हरता हर है
1: परमात्म है सर्वात्म है आत्म बसे जस के जस है पुचंग पर्यात छंद
0: सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
1: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे
0: नमो संसात रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे
1: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने
1: नमो कले कर्ता नमो सात रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग भभूते
0: अलंकार अलंके नमो आशासे नमो भांग भांके।

0: अवरक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो
1: दुष्ट
0: ते तब सरनी परे तिन कै दुष्ट दुख्त वह मरे
1: जगन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब टारे
0: जो कल को एक बार

जुड़ गया। दयाल पुरख मेहरबाना, दया दे घर दा सोमा परमात्मा मेहरबान है। हर नानक साहिब खाना, हरी वाहिगुरु परमात्मा दा सदा कहन रहन वाले परमात्मा दा नाम सानू उच्चारण करना चाहिए। सतगुरु पातशाह जी रहमत करन, सतसंग दियां कड़ियां नाम जात बख्शिश करन, भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।

तरंगी कहो नानक संतन बलिहार है जो प्रभ के साध संगी कल्याण महला पंजवां घर दूजा।

जत कथा तत पेखिय अर पुरख पात प्रधान साध संग ब्रह्म पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान कल्याण महला पंजवा कुन ना तुन आनंद बेद कैत सुनत मुन जना मिल संत मंडली रहाओ ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक आखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिताकी का करो तरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया जर पद कैसे जरो रहाओ बेसन में सिद मुन इंदरा कैदर शरण परो काहू पै सुरगा कोट मध्य मुकत कहूं

सब चारण तले सर दीजै। ना बिना नकटे नर देखो तन घस घस नाक वडीजै। साकत नर अहंकारी कहियै मन नावै त्रैग जी बीजै। जब लग सास सास मन अंतर तत बेगल शरण परी जय। नानक कृपा कृपा कर तारो मैं साधु चरण पकी जय।

खरे दर ठांडे या तरसन कौ दान दी जय त्राए त्राए शरण प्रभ आए मोको गुरमत नाम दरड़ी जय काम क्रोध नगर मैं सबला नैत ओठ ओठ जूझ करी जय अंगीकार करो रख लेवो गुरपुरा काड कड़ी जय अंतर अगन सबाल आत बेख्या हव शीतल शब्द गुर दी जय मन तन तन मन शांत हो अध काई रो काट सूख सबीजय ज्यों सूरज किरण रव्या सर्व ठाई सब घाट घाट राम रवीजय साधु साध मिले रस पावै तत निज कर बैठिया पीजै।

रहन सब निरखी मुकाढ़ अमृत पीजे साकत स्वान कई है बहु लोभी बहु दुर्मत मैल परिजय आप।

सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए, राम नाम रलै मली जय शक्का एकु एको ओंकार। सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी साहिब हंगुर प्रसाद। राग प्रभाती विपास महला पहला, चौपदी कर पहला। नाए तेरा तरना नाए पत पूज, ना तेरा गहना मात मकसूद। नाए तेरा नाव मन्ने सब कोए, बिन नावै पत कबू न होए। अवर सियान सगली पाज, जय बख्शी तै पूरा काज। रहाओ नाओ तेरा तान, नाओ दीवानू, नाओ तेरा लश्कर, नाओ सुल्तान। नाए तेरा मान महत परवान, ते नदरी करम पवै निशान। नाए तेरा सहज नाई सालाह, नाओ तेरा अमृत बैकुंठ जाय। नाए तेरा सब सुख वसै मन आए, मिन नावै बाधी जमपुर जाय। नारी बेरी कर दरदेस, मन किया खुशियां की चैवेस। जा सदी ता टहल ना पाए, नानकूर कूड़ हो जाए। प्रभाती महला पहला।

तेरा नाम दारू अवर नासत करण हार अपार हाउ। पाताल पुरिया एक पार हो वै लाख करोड़, तेरे लाल कीमत ता पवै जसरै हो वै होर। दुखा ते सुख उपजै सुखी हो वै दुख, जित मुख तू सा लाही है तित मुख कैसी भूख। नानक मूर्ख एक तू अवर पला संसार, जित तन नाम ना उपजै से तन होए खुआर। प्रभाती महला पहला, जय कारण वेद ब्रह्मा उच्चरी शंकर छुडी माया। जय

गुर समान तीर्थ नहीं कोई, सर संतोख तास गुर हो राव, गुर दरियाओ सदा जल निर्मल, मिलिया दुर्मत मैल हरे, सतगुर पाया पूरा नावन, पशु परे तो देव करे, रत्ता सच नाम तल ही अल, सो गुर परमल कही है, जाकी वास बनासपत सौरह तास चरण लैब रही है, गुरमुख जी प्राण उपजय, गुरमुख सेव कार जाई है, गुरमुख नानक सच समाई है, गुरमुख निज पद पाई है, प्रभाती महला पहला।

0: वै नाम बिना तन केश ना सुखा वै राव जोग विनोद स्वाद आनंदा मसत पाई भगत गोबिंदा कीर्त कर्म कारण जसंदा अंतर रब तो राज हुरविंदा प्रियो प्रियो प्रीत प्रेम और थारी दीना ना पियो बनवारी अंदर नाम दान व्रत कारी त्रिपत रंग तत् बिचारी कथो कथो क्या मैं जोर भगत करी कराए ही मोर अंतर वसै चुकै मैं मोरा किसे भी दूजा नहीं होरा गुर का शब्द महारा सुमीठा ऐसा अमृत अंतर डीठा चिंचाख्या पूरा पद होए नानक त्रापयो तान सौख होए प्रभाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मानिया अवरण रंग नहारा एनस जिया देख संभाले तसी की सरकारा मेरा प्रभ राम कणो अत रूड़ो दीन दयाल प्रीतम मन मोहन अत रस लाल सुगूड़ रहाओ ऊपर कूप गगन पनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना शोभित जाने गुरमुख ज्ञान विचारा
1: गुरु प्रसाद प्रभाया आत्र संग रूर चलू ले राती दूजा रंग न पोई नानक रसन साए राते रव रहया प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह में रावल कब जावे।

सब सारणा अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो वसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हरनाली साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश जिस देह सो पाव सदा से सलाह तेरी नाम नवसाव नाम जिन कै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे।

आनंद सुनो बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रापाया उतरे सगल बसुरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पे सर से तूरे गुरते जानी, सुनते पनीत कहते पवित्र।

नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत या गुण दे तिया कोई ना सुझई जे तस गुण कोई करे। सुन ऐ सिद्ध पीर सरना सुन ऐ धरत अवला का सुन ऐ दीप लो पाताल सुन ऐ पोहे ना सकै काल। नानक भगतां सदा विगास सुन ऐ दुख पाप का नाश सुन ऐ ईश्वर वर्मा इंद सुन ऐ मुख सलाहण मंद सुन ऐ जोग जोग तन भे सुन ऐ शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगतां सदा विगास सुन ऐ दुख पाप का नाश सुन ऐ शासन तो ज्ञान सुन ऐ अठ सठ का इशनान सुन ऐ पढ़ पढ़ पाव हे मान सुन ऐ लागे सह ध्यान। नानक भगतां सदा विगास सुन ऐ दुख पाप का नाश सुन ऐ सरां गुणा की गा सुन ऐ

है जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोय। मन है मार्ग ठाक न पाए मन है पास में प्रगट जाए मन है।

केतिया खाणी केतिया वाणी केते पातन रेंद केतिया सोती सेव केते नानक के अंत नायंत ज्ञान खंड मह ज्ञान पर चांड तथ नाद बनोद कोड आनंद सर्म खंड के वाणी रूप तथ घाड़त घड़ी है बहुत अनूप ताकिया गलना कथ

लागे जाहे। जिनके राम बसे मन माहे, तिथि भक्त बसे के लोक, करहे आनंद सच्चा मन सोय। सच खंड बसे निरंकार, कर कर वेख नजर निहाल, तिथे खंड मंडल बर भांड।

पिता लोग सुत बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर कृष्ण भाई ठाकुर काए मन पौ करिया उड़ी उड़ावे सैकुर संत पाछे बचरे शरिया तुन कवन खलावे कवन चुगावे मन भय सिमरन करिया सवन दान दस अठ सदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सत बल जाई है तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर अगम अगम पारा सब ते अव ही तुद जी हर सच्चे सृजनार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का तारा हर ते अव हो संत हो जी सब दुख बिसारणारा हरिया पे ठाकुर हरिया पे सेवक जी क्या नानक जंत बिचारा तू घटकड़ अंतर सर्व निरंतर जी हरि को पुरख समाणा एक दाते एक पे खारी जी सब तेरे चो

गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सकल बराए फूल अंत ज्योति कैसी आरती।

देख फूला बिसरै तेरा चेतना आवै नाव सिद्ध हो बांस दलाई रे दे आखा आओ गुट प्रगट हुई वैसा लोक राखी पाओ मा देख फूला बिसरै तेरा चेतना आवै नाव सुल्तान होवा मेल लक्ष लश्कर सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सभा मा देख फूला बिसरै तेरा चेतना आवै नाव श्री राग महला पहला कोट कोटि मेरी आरजा पवन पीण पियाओ चंद सोद गुफे न देखा सुपने सोन न थाओ पी तेरी कीमत ना पवे हो कि बुढ़े आखा नाओ साचा नंका निज थाए सुन सुन आखण आखणा जे भावे करे तमाए रहाओ कुसा कटियां वार वार पीसण पीसा पाए अग्गी छेती जा लिया भस्म छेती रल जाओ पी तेरी कीमत ना पवे हो कि बुढ़े आखा नाओ पांकी होए के जे भवां से असमानी जाओ नदरी किसे ना आव ना किस पिया ना खाओ पी तेरी कीमत ना पवे हो केवड़े आखा नाओ नानक कागद लखमणा पड़ पड़ की चे पाओ मसू टूट ना आवे लेखन पौन चलाओ पी

आप सुझान ना भुले ही सच्चा बड़ करसान पहला ताती साध कै सच नाम दे दान नौन दो पजे नाम एक करम पवे निशान गुर को जान न जानी क्या ते चज चारन दले नाम बसारिया मन मुखियां दुगवारिया वन जान न चुकी मर जन में हुए खुआर चंदन मोल अनाया कुंकू मांग संदूर कुचुआ चंदन बोकना पाना नाल कपूर जे तन कांतना पावीता सब अडंबर कूड़ सब रस भोगन बाद है सब शिगार बेकार जब लग शब्द न पे दिए क्यों सो है।

अमल कर धरती बीज शब्दों कर सच की आप नितली पानी हुए किसान ईमान जमाए न पिस दोजक मुड़ी बजानी मत जान सह गली पाया माल के माने रूप की शोभा विधि जन्म गवाया रहो ऐब तन चिकड़ो मन मीड को कमल की सार ने मूल पाई पोर उस्ताद नित पाखिया बोले कंबूजे जाने बुझाई आखण सोना पौन की वाणी हमारता माया खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक ध्याया तीह कर रखी पंज कर साथी नौ सतान मत कट जाई नानका खेरा पै चलना माल तन के तू संजयाई श्री राग महला पहला कर चौथा सोई मौला जिन जग मौलिया हरिया किया संसारो आप खाक जिन बंद रहाई।

रोहिणी सुनात काम क्रो तन बसे चंडाल धन करू परा करतार फाही सुरत मलोकी वेश ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता पा धन करू परा करतार मैं कीता न जाता हराम खूर हो क्या मुदे सांधोट चोर नानक नीज गए विचार धन करू परा करतार श्री राग महला पहला कर चौथा एक सुत।

कच्ची कंध कच्चा विचराज मत लूणी विका साध नानक आने आविरास बिना नहीं सावास। श्री राग महला पहला कर पंजवा छल छलाई न छले न कहो कटारा कर सके जो साहब राखे त्यों रे लोभी का जियो टल पल बिन तेल दीवा क्यों जलै रहाओ पोथी प्राण कमाइए पौ पट्टी तन पाइए सच बुझने अण जलाइए इहो तेल दीवा इहो जले कर चानण साहब तौ मिले रहाओ इतन लागे बाणिया सुख होवै सेव कमाणिया सब दुनिया बन जानिया फिर दुनिया सेव कमाइए तां दर गए वैसण पाइए को नानक बाहर उड़ाइए। श्री राग महला तीजा कर पहला एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद हो सतगुर सेवी अपना एक मन चित भाई सतगुर मन का।

सब के सुनदा वेखदा कि मुख रपया जाए पाप पाप कमाव दे पापे पचे पचाए हो प्रभ नजर ना आवे मन मुखूज ना पाए जिस बखाले सोई वेख नानक गुरमुख पाए श्री राग महला तीजा बिन गुर रोग ना टुटे होमे पीड़ ना जाए गुर प्रसादी मन वसै नामे रह समाए गुर शब्दी हर पाईए बिन शब्द भरम भुलाए मन रे निज कर वासा होए राम नाम सलाहे तू फिर आवन जान ना होए रहाओ हरि को दाता वरदा दूजा वना कोई शब्द सलाही।

दर्शन के ताई दुख भूख तीरथ की है। जोगी जति जुगत में रहते कर कर भगवे भेख पाए तौ कारण साहिबा रंग रते। महाराज कहिंदे रब दे दर्शन करन दे लई किन्ने किन्ने बंदे काम करदे आ। आ बंदे ने शरीर सकाता अपना पुठा लटकिया आ, कोई नहाई जांदा आ, पता नहीं किन्ने कुछ वाहिगुरु जी दे दर्शन करन लई करदे आ। जिन्हां जिन्हां ने जेल चिट्ठियां पढ़िया ना जी, उहदे विच भाई साहिब भाई रणधीर सिंह जी एक गल बार बार लिखदे आ, उस गल दे विच सारी अरदास आ। जदों उन्हां नूं पहली वारी वाहिगुरु जी दे दर्शन होए ना, तो उन्होंने गल च पला पा के कहा, वाहिगुरु जी इस अजर नू जरन की शक्ति बख्श दो। वाहिगुरु जी दैट मीन कि वाहिगुरु ये आप जी के दर्शन मैं सह नहीं सकता, मेरे को संभाल नहीं हो पा रहा, मैं संभाल बख्श दो। तो जो दूजा बंदा आता हंकार च कहता तुहानू पता मैनू की मिल गया। भाई वीर सिंह जी, भाई रणधीर सिंह जी, होर गुरमुख प्यारे अपन गुरबाणी तो गल्लां लैके दसते हैं जी। अंत कारण केते बिल लाहे, पर वो लाइन हो गां कंप्लीट होनी है, ताके अंत ना पाए जाहे। इनू ताके क्यों नहीं पढ़ांगे जी, इनू ताके पढ़ना है, इहदे बिंदी नहीं लगनी, क्यों? जो कंडीशनल हो जूगा ना, जां तिस भाणा तां जम्मिया, जदों वाहिगुरु नूं चंगा लग्या उदों जम पिया, कंडीशन हो गई, जां कीता तां तां। इह हैगा ताका मतलब प्रनाउन, इह आ गया आपां कहिंदे आ जिहदा हैगा भी लै जाओ। जिहदा किहदा मतलब, किस बंदे दा तां हैगा ना, मैनूं नां नहीं पता, बस मैं कहता जिहदा हैगा, दैट मीन दैट्स प्रनाउन। सो ताका मीन प्रनाउन आ, इत्थे बिंदी नहीं लाउणी आपां। कई थां ते प्रनाउन नूं बिंदी लगदी आ, वह हैगियां मराठी वाले पासे दी लैंग्वेज, उत्थे बाबा नामदेव जी ने लाई हुई है, वह लैंग्वेज करके लगी आ, पर इहदे विच नहीं, क्योंकि वाहिगुरु जी दा आया, ठीक है। ताके मतलब वाहिगुरु जी, ताके अंत ना पाए जाहे, नहीं पा सकदे। आ फोटो की कहिंदी है जी, हरजत सिंह फोटो की कहिंदी है, एक शब्द कहिंदी है बाबा रविदास जी का, उदे दस दौ फोटो च की दिस रहा तुहानू, पंजाबी दी कहावत है, कभी खूह दा डड्डू आ, वह खूह च डड्डू बनाया, एक्चुअली वह खूह दा डड्डू तां नू देखदा ते कहिंदा एडा का समान आ, है ना जी। अच्छा यही उदाहरण थे, बस उहदे च लिमिट ही वाहिगुरु जी ने उन्नी पाई रब जी नू देखण लई, बस उहदी उही लिमिट आ, उस दे वाहिगुरु जी दे अंत किसे पास्यो नहीं पाए जा सकते। ते एक शब्द आउंदा वाहिगुरु जी दा, बाबा रविदास जी दा, कूप भरियो जैसे दादरा, दादरा मतलब डड्डूआं नाल भरिया होवे, डड्डू होण उहदे विच, कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਸ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਬਸ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਖਾਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਤਾ ਤਾਚੋ ਮਾਰਕ ਨਾ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਧੰਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਅੰਤ ਲੱਭਣ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਅੰਤ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤ।
someone, कोई

बिना तेग केसन देवो ना देदारे केसन धूप दे सुच पावन है ए गुरु की मोहर सुहावन पहले जब सृष्टि उपाई तब ही मानुख देह बनाई तन इसके सिर केस जो दिनो सो एह तन श्रृंगार है कीनो दाड़ा मूछ सिर केस बना।

कंगा दोनों वक्त कर, कंगा दोनों वक्त कर, पाग चुने कर बांधई दातन नी।